0: 拉赫尔的晨间奶茶讲究新鲜醒神，外加送货上门。18世纪初，奶茶还是贵族的专属饮品。随着茶叶广泛种植，与本地人热爱的牛奶结合，奶茶逐渐普及，成为巴基斯坦的国民饮品。
1: लाहौर हो मैं और तुम और एक कप चाय हो।